काल पुरुष से यदि अरदास करें मंगदे पियन शुभ कर्म अपने वास्ते में आप तो निरंकारी ज्योत आप तो निरंकार का ही स्वरूप ਅਤੇ ਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਮ ਹੂ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ शुभ कर्म ही सब को बची है बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ का सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी तो शुभ कर्मों की विशेषता है सबसे ज्यादा शुभ कर्मों नाल ही दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे को शुभ कर्म तो अजकल भी दर्शा जी ਅਸਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ असली उसका नाम महादेव है सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत में भेद महादेव नु लोग शिव कहते वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो रब की बंदगी करने वाला लोग कहते भई ये तो रब रूप ही ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੁਹੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਤਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸੀ ਧਰਮ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ
धर्म ही सब को वड्डी दा जिहदे कोल धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते सफल। धर्म धर्म नाल प्यार कीता इस नाशवंत शरीर नूं कुर्बान कर समझिया इसने तो बिन इसने तो एक दिन बिन सी जाना है तो धर्म चंगी थी धर्म नाल प्यार कीता शुभ गुणा नूं ग्रहण कीता जो कलगी दर सके पातशाह जी ने मंग मंगी है फिर बाबा जोरावर सिंह से बाबा फतेह इस तरह शुभ गुणा नूं ग्रहण कर दे सब तो वड्डा शुभ गुण सब तो वड्डा कर्म हजूर प्रमोदन सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल हरि दे नाम नाल प्यार कीता सिमरन नाल प्यार कीता धर्म नूं उच्चा ते सुच्चा रखिया तो आओ प्यारी अज उन्हां महान पवित्र हस्तियां महान व्यक्तियां दी याद जुड़े आओ जो दात मेरे साईं ने मंगी है आओ आपां भी मंगी आपां किस तो मंगी अपने गुरु तो मंगी आखो श्री वाहिगुरु असीं गुरु अगे झोलीए क्योंकि साडा इष्ट कलगियां वाला असीं कलगियां वाले दे सिख ओह साडा गुरु गुर परमेश्वर को पानी चाहिए गुरु ते परमेश्वर फर्क कोई पर अपने इष्ट दे अगे अरदास करिए ते ए मंग मंगी केड़ी जो कलगी दर्श के पातशाह जी ने अकाल पुरख की अरदास की पहले देव बोले पिछले सारी संगत

कुकुर के लोग बसेंगे तेई रेणी रे सोई दिल मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना तरह

मन विच वस जा रहे बड़िया बरकतां ने। वाहिगुरू का नाम प्रभु का नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वड्याई है, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन के जतना विच हां, हिरदे च वसाउण के जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलता। साडे सारिया का प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जाए। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लैना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदों रोमा विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी, कली कली नस विचों, पूरे शरीर विचों, श्वासां विचों नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुणदा भी, अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हां ना, साहिबां च कहिंदे ने ना जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल दी गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तां हो गया, सदा ही कीर्तन हुंदा रहे, इह किवें हो सकदा? कोई एक अवस्था है, कोई उहनूं अनहद नाद दी गल करदा, कोई उसनूं इलाही नाद दी गल कह के करदा, कोई किसे ढंग नाल दसदा। लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरू हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंदी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंदी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त ही आला दुआला ते मनुख दा अपना शरीर इउं ही जापदा जिवें झूम झूम के गा रहा हो। इन्ना ना होवे कि जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई बार यह भी बोझ जापदा, सुनना भी बोझ जापदा, करना भी बोझ जापदा। हिरदे च ना वसे आनंद ना देता ते वगार जापदा, बोझ जापदा। शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापदा। मैं एक बेनती करा, बच्चे नु स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करता है। कोई विरले बच्चे होंगे ने जिहड़े शौक नाल तुरदे ने, दूसरे बच्चों वल वेख के इन्हां दा लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडदे ने, हसदे ने, नचदे ने, कई बच्चों के अंदर यह शौक पैदा करता जाता है। बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़िया तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर पर बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लगे आ बहुते तां रोंदे भी इत्थे गए, उन्हूं एक बार धक्के स्कूल पहुंचाना पैंदा, उत्थे जाके पैंदा, एक तां जकड़ के बहना बड़ा होता, एक जो कुछ पढ़ाउंदे ने उहदी समझ तो बाहर आउंदा, वो पहला पहला बड़े परेशान होता, पहला पहला उसनूं कूड़ा एड़ा या एबीसी या जो भी अक्षर हन उह बोझ जापदे। लेकिन चार दिनां बाद वह जिहड़ा बोझ है वह ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते, उन्हां अक्षरां बिना नींद नहीं आउंदी। जब तक कुछ पढ़ना लवे उहदी मन की शांति नहीं बनती, यह संसारी पद्धत की गल। धर्म के मार्ग से भी ऐसा है, शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापदा, नितनेम भी बोझ जापदा, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जिहड़े कदे कदाई इस पासे तुरन वाले ने, ना कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जिहा अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाए, वासियां मारदे ने, पासे मारदे ने, किहड़े वेले भुख पवे जान छुटे फसे जापदे। लेकिन माड़ा जिहा बंदा रुचि लावे ते जिस तरह वह बेनती की है, स्कूल जाण वाले बच्चे कई ऐसे भी होंदे ने, वह वरिया बंदी पंद्रह पंद्रह भी वरे बोझ ही होंदे ने, पढ़ते भी किताबां नाल मत्था मारदे ने, रोंदे दुखी होंदे, कई वारी वह फेल हो जाते, ते तू तू के अपने आप नूं शर्मो कुशर्मी दूसरे नाल तोरदे ने, चा पैदा नहीं होंदी, शौक नाल नहीं पढ़दे, ते फिर उहदे माता पिता और आला दुआला कहिंदे पढ़दा तां हैगा, पढ़दा कदा विगार कटदा, तू कसीट के तुरिया होता, वैसे पढ़ने वाली गल कोई। बिल्कुल इसे तरह साड़ी गल,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਪਾਂਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਸੇਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਹਵਾ ਚ ਲਟਕਾ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਾ ਤੇ, ਜੀਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਚਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੀਓ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ, ਚੀਤ

बैठे सन थोड़ी दूर ओ रेत वाली पंड रखी ते सुतरा पंड दी परिक्रमा करन लग पिया। बार बार पंड नु नमस्कार करदा है, बार बार परिक्रमा करदा है, मत्था टेकदा है। सेवादारा ने तकिया, सतगुरु ने बेनती की, सतगुरु आ तकिया जे सुतरा आप सिंघासन ते बैठे हो ते पंड नु मत्था टेक रहे है। साहब कहन लगे सुथरे अज की हो गई। सुथरा पब्बा मार के रो पिया, कहन लगा पाछा अज इस पंड नू मत्था ना टेका ते किनू टेका, अज एदी परिक्रमा ना करा ते कीदी करा। पाछा अज तेरे पहरेदारा ने पाबंदी ला दी के तू दीदार करन अंदर नहीं जा सकदा, तेरे पास भेटा होवे ते अंदर जा सकदा। पाछा मैं कित्थों धन लिया, कित्थों प्रसाद लियावा, अज तेरे पहरेदारा नू झूठ बोल के आया के गुरु के लंगर वास्ते खंड ले जा रहे। पाछा रेत दी पंड है, अज एदे सदका तेरे दीदार हो गए, एदे सदका अज मैं अंदर आके तुहाडे चरणा विच सेवा कर सकदा। पाछा इहनू मत्था ना टेका ते किहनू टेका, जिहदे सदका तेरे दीदार हो गए। गुरु कलगीधर पाछा ने सुथरे नू गलवक्कड़ी विच लै लिया, प्यार कीता कुट के, कहन लगे अच्छा जा सुथरिया तेरी ए भेटा दी परवान, भावे तू रेत दी पंड लैके आया है, जा अज तो बाद लंगर विच इसे रेत नाल भांडे मांजे। दीदार हो गए, आओ भाई अज आपां भी।

ठार किवन किन्ही निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा किन्ही ग्रह तजवन खंड पाया किन्ही मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती।

के सरदार बुलाका सिंह ने नीवी पा ली अते सोचन लगा कि ठीक ही मैं कैरां वाली करतूत कर रहा हां। जे मैं हरमंदर साहब दी शान बदले जान दे दिंदा कि मस्से नाल लड़ मरन वास्ते होर भी सिख आउंदे, कि मैं अपनी जान नूं धर्म नालों ज्यादा प्यारी समझ के भज आया हां। ते फिर सिख ने आप ही जवाब दिता, नहीं, जे मैं उसे ही लड़ के मर जांदा ता हरमंदर साहब दी हो रही बेअदबी दी खबर इन्हां सिंघां नूं कौन पहुंचाउंदा। इन्नी गल सोच के सरदार बुलाका सिंह ने जथेदार नूं ताना हे

मौसम ओ घड़ियां ओ पल ओ समा सफल है जदों चित आवे श्री वाहिगुरु। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पास आके ब्राह्मणा ने बेनती कीती, महाराज जिस तरह शास्त्रां विच शुभ अशुभ दिन गिने जांदे हन आपदे मत विच भी हन, तां धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे हन भई साडे मत विच तां ओ मौसम ओ समा ओ दिन ओ घड़ियां ओ पल सफल हन जदों परमेश्वर दा नाम चेते आ जावे। पले दिवस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओ वेला को हों बल जाऊं जित मेरा मन जपे हरि नाम।

हो कदम सुहावने हम, जो कदम सतसंगत वाले जाते हम, जो कदम परोपकार ले किसी की सेवा ले किसी के भले ले उठ।